0: शकत नामहन इत्य कपहन तुम्हाला इथोपी व्यवत संपेत अंक तातक मुमोयम इथी तकी नवत तेच को नवत अंक ही ते तसोन का ओ अंचन इतातिम इतामिम निकम इत तकायत सोन पियो खाएप ही तचन पहन तकायत एप तवी वाय पुराहकम तेवकाचित अंक्षिनोम ही तहिंजस्केकम सोन पियो ही ततवत कतमाल तुतका पाय सोन कहालाय तत पेह कतवोस तुमल आनि तुमल नखकमांगें यासन नखकांच की आओ पितें हकम कते हखालाय तिंगु नामे कखवाय पियो नियंकाय यासन निथी तावहन हिंचना आओ नंग युकर कने तुवत मोंगवस्ते इतिमुय अमंगम सन्नहीत यप आसत यप नतमलतक पहानन अंचहीत आसतक अखपिन इतिमुय यप इसिनमुय उयीतन पायत यां होपित अहने अपिरपंत महिम यां नात वनित सन तपास पास अनावत इमुय लाइनम वाकीत पोकमुय पुमुय हक्तमलते युहकालाइते मांगेंग मुमोयम अंक हित एत उतित मलत मंत मलत सो अंका ओ अंचत्न नोवतत ये भीत हकिम तक्युख अंचपिल इतनेश्वंगे आओ येश्वे हालाय तुतिम हकिम नेनेश्य ई हिम सिनोत अंक हप्यास कसलावने यन हकना भीत अंगवन मक्यं यन हक कत्तं तावनावत नाकावा की तंगवन ताय की तन तुमलत पु प्याओ हिंसकन की तसन पु नाओ अंचो येप इतिम मुमोय मन आक अंचसोन कनेने से हालाय ततिम कांक नानप ही त हिंसकन कांक इत पहान वेवत ही त पहानत ही त तिनिश कियत पावंग ही त सुप्सिव वेवत ही त तुत ये कंपुत कपावन इत नेशो खत कालत ही त हिमयत यंत खत नो नो व पु इत पुएम मुमोयम नक सोन कपियनात पाई हीत इत यंग हिंसस्क पिक तोत सेन हीत न नोवलल सेन हीत त येक यत यंगयापु पोत सकाप्त पु अंकाय पेत पियता तखनात इत पाई तेलेन इत आनि हिंसस्क सेन हकम हिमोय इत हीत त पेरकान ई हिम हापी होपी पास कचिया यांग इता इतांग हिंस कुस तो तोक बेवत हकी मक्स होने से चेप ते मल तोता पुत हकी अंस ये कुए तब के न ये अंस हकी ही ता आयुर के हालाय तोते कुछ हकी में नंगवात हिम सुअन तनक में एपम तो हकी मित लोमा हिं तकत ये इमा ओवा यकम हकी में आचलक न यक हकीम पुए पाला इतते कहीं ही तन कुछ हिं तकत अंग ये कुए इत इताना तावत पियो हकीम हाला इतते ना यान हकीम तब के न ये नाना संगने ही तांग पवन क्यापी पवन पस्तमाला थका हिक्से हक ना संगने अंसा पियो हक वाइम पेपु मिहिक में हक ना पु पियो अंसा ककीम तोकवं नाना संगने कबोंग वक पियो हक मान सही ते ते मलत आ पियो ना योरेकिया हिन हक हे तकाचित पियो आहोय याय न निकाय यान हक एपाम तक वुवन केंग हक वाइन पु अंसे या होपित आह निका तो किल न वो नाट पियो इत हीत इता न वो ते इता वुमे पुत इता हिन से कुस्का एपाम हकिम कतोतों हक कम हक कनाशंग न किवा न वो हकिम नाट पियो हीत हिन चस्के ni kayan hakam hin hakim tap kinaye ne ne sat na na sang ne na na mi hi ta lo maya ay kyat an sa hakim tok we pi an sa lol mat ang ta la na na ka hakim ta la ho ye pi an sa pang ka kwa kwai pi ta ta la na ya pa i ya sa ka hi mo i hakam i pahan be wat ang i lo mata la ngwa pampa ka hi mo la wai ई हापी पंत हक पाई हो पिता क्वा क्वाई 一切的怕打我他搞好来的。不也比也搞呆嘛他捏个一旦没家里嘛都给那我的给我的给我来的。啊哈哈得我搞起的。所以说你的黑的不你你的的的不没少的但是这麻不呀呀。白帮所以说你没生的。我把烟和他们的比安子刮刮的。他可能要我们我们给那那什么呢比如好来给那那啥我们安子都刮。
1: KUII supported by Mesa Media Incorporated presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. For our Hopi Word of the Day, you will hear Lendrick Lamaya Stewa state the Hopi word twice. Use it in a Hopi sentence. He will then translate the Hopi word into Pahan Labai and translate the sentence.
2: Patna.Pumpkin, squash. Pumpatnga. That is a pumpkin.
1: That was Mesa Media Hopi Word of the Day here on KUII 88.1 FM and 89.1 Low Power FM. Labai lesson plans by Anita Poliala, spoken by Lendrick Lamaya Stewa, recorded by Peter Bungart.Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255. If you speak Hopi Labai, we need you as a KUII volunteer. Email us at info@kuii.net or call us at 738-5505. Kwak kwai.
3: Anza ita kasi po, ana de alung iotak itam kanamite kayeng ma. Nikyang mo, anza pa'y wuyok kat lavaye at pamhikyatak. As itam ahway ita lavaye, ita atsatsak mo, titikay na yak pumatikay vaye sen itam amiwuwuk mo yaw tikay vasi yung ni. Papisat.Put lavaitang, umaha kapi, su tenis yes vamantam, umasu tenis la makanana mea atika kang nono vanguesunkai. It hita, itanusio kai hikis, petum tatayum, kakwangwaying, kaayakuya niknana kwangu, niknuk kapantan, suso kitas, hisat ngak.Neventing nam ko na mahin na sunala ni kyang na ang pan nam ko tutskwa ba kitsukin at kamik na hawe pang kay pan sunala pan nam ko wuwe put awa kinuwa takwa kim nunisang ko yan itawa woyom ni nikam tis uwiyo pa na sutse put sa labayting mo na anave taham kyang wungwa isoy ikway amamam na wungkat Pai na pahita supan pai na kamamite kai kyang kush na pam kush pam haki ao yung put na put lalvay ngwas nyip pati pan yung kakakat te kai vasu tang musu ngawnen na anave pam itaki tuki supan suun hisat itam pan hakam hinto tinit itam hapi anave nalasi itamKanamite kave ima tatsayan pupas pumayaka hita pumahin kakwak itam pamyane katnyan pumalavaye yang kakatekayeng. Nyak nahapi it ansa aknavitin na yeg ikitsuki. Sungyaonen ne put tsista pai ne kanat ne piu it aknavan. Pai pumay sinum.Itam pangkau, itam pahan, yes, maka itam pe, it cucwal pit himu yang wah. Nyak papik hapi ni put awpai puma sinom put panaya itam puma itataham sulauti. Nuk piuhun wang wah. Ipawa, pam sus nyoteng put itaki coki cesta. Papi as kamungwi ni kakitang wah, nuk pa kamungwi.Ne pai pe lavai aya ne pam apio pam ape ne pui tam pai as a totim kya kyang pe ma pe ti ta hunak katit yes va pahan lavai te kai pa e wit te kai pa ya songyaunen ne kyang p pumahihita ang yanne kai yan to ti kai pui tak ita mai pit ti kinai kita ki toke uwi ma ang kai na basto ti ni sino mo pai na pitam asyes kai tam as okyo emangam hin ematuak yes dikat na nawak kita ti mai engai kahalai mo hak eh bakamu ang wewam te askoli.

ष्टेयाता तवा चौता सौवाने हके विनष्टेयाता न एता सौवाने आ याय आ याय अह ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्या

चलो या कृषा के पमक नमो श्यामत वाते या मो ओ वेन मक्त वन लव ये पे हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर